सदा सहाय संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ। जय जयकार जगत रमै लोचे सब जिया, सो प्रसन्न पै सतगुर प्रभु किस बिगड़ न थिया। जाका अंग दयाल प्रभु ताकै सब दास, सदा सदा वडियाइया नानक गुर पास। जाका अंग दयाल प्रभु

हम गिरते रख लीनी हार मेरी, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बेख खाई।

0: बाबे ने बख्शिश की। अगला बचन है हीरला, कबीर हर हीरा रब हीरा है, गुरु का शब्द हीरा है, जन जौहरी। जन जौहरी का मतलब की है? सेवक जिहड़ा जौहरी है, क्योंकि हीरिया के व्यापार करने वाले नूं की कहिंदे ने? जौहरी कहिंदे ने। सेवक जौहरी हीरिया का करदा व्यापार, भी इथों हीरे चुकदा ते जाके दूजिया नाल शेयर करदा, इथों गुण लैंदा ते जाके दूजिया नाल की करदा? शेयर करदा। कबीर जन हर हीरा जन जौहरी, लेकै मांडै हाट। हुण वो की करदा? अपनी हट्टी नूं सजाउंदा। आपां अपना घर सजाउणा होवे ते कीमती चीज़ां लाउंदे ना, कोई कुछ ला रहा घर दे विच, कोई फुल ला रहा, कोई कुछ कर रहा। आखिया इथों हीरा लै के ते मैं अपनी लाइफ की इस हट्टी नूं, आस जिंदगी नूं सवार रहा, इहनूं सजा रहा मैं। सोहणे सोहणे गुरु का शब्द मैं अपने अंदर टिका रहा। हर हीरा जन जौहरी लेकै मांडै हाट। मांडै दा मतलब सजाउणा, भी मैं अपनी लाइफ नूं सजा रहा। जब ही पाई है पारखू तब हीरन की साट। तो जदों मैनू कोई इस हीरे की कदर जानने वाला मिलता ना, तो मैं वो इन्ह हीर का विचार वटांदरा करना, साट का मतलब वटांदरा करना। पुराने समय दे विच की करते होंगे सी, उदों उहदे करंसी का इन्ना प्रचलन नहीं सी हुंदा। उदों हुंदा इदां सी वी जिन्हें कणक बीजी है उन्हें कणक दे के उहदे बदले कुछ होर लै लेना। हुण तुहानूं पता होना भी जदों पिंडां दे विच आपणे कोई मिस्त्री सिंघ सी, कोई दूजा तीजा जिहड़े खेतीबाड़ी नहीं सी करदे, उन्होंने गाए बगाए आण के जिहड़ा खेती करने वाला किसान सी उहदे घर दे विच आउणा, ते जे उहनूं किते किले घड़न दी लोड़ है, किते उहदे मंजे बनाउणे ने उहने बना जाणे, ते जदों 6 महीनिआं बाद किसान दे घर च कणक आउणी, ते उन्होंने पैसा तो कोई नहीं देना, उन्होंने पीपा एक कणक का उन्होंने सारे पिंड ने दे देना। उदों भाइयों का भी इदा ही काम हुंदा सी, गुरुद्वारे वालिआं दा। उदों कि तनखा हुंदी सी, पैसा इन्ना हुंदा ही नहीं सी लोकां दे कोल। 6 महीने फसल आउंदी हुंदी सी, कणक आ गया, झोना आ गया, झोने तो उन्हें पीपा झोने का दे देना, कणक आ गई तो कणक जिहड़ा है वह दे देनी। सो उहनूं कहिंदे सी वटांदरा, मतलब चीज़ां दी चीज़ां नूं एक्सचेंज करना, बदलना। किसी तो कुछ लै लिया, उन्होंने कोई दे दिता। बाबे ने आख्या जिहड़े सत संगी जन ने ना, जिहड़े चंगे लोग गुरु की संगत विचों आण के कुछ सीखते ने, वह फिर इन चीज़ों आपस में चेंज करते, गुणा की सांझ करते हैं। जिन्होंने महाराज कहते सांझ करीजा गुणा केरी छोड़ अवगण चलीए। चंगियां चीज़ों की सांझ करनी एक दूजे, सानू कुछ पता लगे आपां। मैनू बड़ी खुशी होंगी कई बार, मैं आज सवेरे इतने काउंटर से बैठा सी कथा करके, तो नौजवान एक वीर कथा सुन आता सी, आ कहिंदा कहिंदा जी तुसीं उदाहरणा एक दो बड़ियां कमाल दे दित्तियां, मैं इंडिया फोन ला के अपने परिवार च सांझी कर दिंदा, किड्डी वधिया चीज़ है। तो मैं उन्हूं पुछ बैठा, मैं कहा भी की सांझा करदा? कहिंदा भी तुसीं एक दिन कथा, अच्छा वेखो असर पैंदा जदों आपां बहिंदे आ। नौजवान है वो वीर, चलो वो केस दाड़ी तो नहीं है, पर कथा सवेरे उगा मैं सुन आता। कहिंदा जी मैं अपनी फैमिली नाल गल्लां शेयर करदा हुंदा। मैं कहा जी की सुनिया तू? कहिंदा भी एक दिन तुसीं इत्थे उदाहरण दे रहे सी कि जे लीकेज होवे, जे घर दे विच पानी दी लीकेज होवे, ते बंदा सियाणा इंजीनियर सद के जां जिहड़ा पलंबर है उहनूं सद के ते उह लीकेज ठीक कराउंदा, ते इत्थे लीकेज है, उहदा रौला नहीं पाया जांदा। मतलब इह दोष किसे नूं नहीं दित्ता जांदा, लीकेज आपणी ठीक मोरी उह जिहड़ी हुंदी आप बंद करनी पैंदी है। इदां ही आपां दुनिया नूं कुछ नहीं कह सकदे, सानूं आपणीआं मोरियां बंद करनिया पैनिया, वो कमजोरिया जिहड़ियां साडे अंदर होण, मतलब इदां दी। हुण मैं सोच रहा सी, मैनूं कई वार चेता भुल जांदा, पर वह वीर जिहड़ा सी उहने एक दो गल्लां मैनूं दस्सियां। हुण इहो सांझ हुंदी, होर सांझ की हुंदी है? जदों आपां अपने फैमलियां परिवारां च बहिंदे आ, किन्नियां इधर उधर दीआं मतलब खिमा कर देना, जिन्हों ना आप ठेठ पंजाबी कहने ना भी बकवास किस्म दीआं गल्लां आपां करदे आ, ते जे आपां धीआं पुत्तां नाल अपने बच्चिआं नाल परिवार विच कोई चंगी गल भी करांगे ते इह ज्यादा बेनीफिट है। तो महाराज कृपा करे, बाबे ने इत्थे आख्या कबीर हर हीरा जन जौहरी, रब हीरा है, गुरु का शब्द हीरा है, जिहड़ा सेवक है वह जौहरी हुंदा, वह की करदा? लेकै मांडै हाट, वह अपने शरीर रूपी हट्टी नूं सजाउंदा। जिवें असीं अपने घर नूं सजाउण वास्ते वेखो दिन रात मेहनत करदे आ, ऐस घर नूं वी सजाइए। इहने सजना कहदे नाल है? इहदे अंदर कोई बल्ब ते लगणे नहीं आ, इहदे अंदर गुरु का शब्द ही लगना। जब ही पाई है पारखू, तो जदों सानू कोई पारखू मिलता, जिवें असीं घर सजाया होवे ते कोई आण के पुछे आह लाइट कित्थों लाई, आह कित्थों लै आई, जदों मैं अपने आप नूं सजावांगा, जदों मैनूं पारखू मिलेगा, तो फिर तब हीरन की साट, फिर हीरियां दा वटांदरा होगा। मैं कहांगा मेरे कोल आह चीज़ है, मैं तैनूं आह दसदा, तू मैनूं इहदे बारे दस। इदां बंदे दा मानसिक विकास हुंदा है। तो गुरु कृपा करे, ये सी कबीर साहब दे दो बचनां दी विचार, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਈ ਕਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨੀ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਐਸਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

दर्शन प्यासी दिन रात चेतवान दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुरु।

कर दया लाड लाए लीजिए, देह नाम अपना जपाओ स्वामी, हर दर्श पेखे जीजिए। समर्थ पूरन सदा निचल, ऊच अगाम अपारे, बिनवंत नानक तार कृपा, मिलह प्राण प्यारे। जाप ताप बरत कीने, पेखन को

अनाथ निर्गुण काश ना जाना, मेरा गुण अवगुण ना विचारिये, दीन दयाल गोपाल प्रीतम समरथ का।

जप जीवा हर हर चरना। अमय सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संता संग मिले जप पूरन कामा राम। सब काम पूरन दुख बिदीरन, हार निमख मनो ना बिसरै। आनंद आन देन सदा साचा, सर्ब गुण जगदीश रे। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको थमा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटिक जग फला,

हर नाम जपत सोहंत प्राणी, ताकी महिमा केत गना। हर बिसर नाही प्राण प्यारे, चितवंत दर्शन साध मना। शुभ दिवस आए गए कंठ लाए, प्राभि ऊचे अगम अपारे। बिनवंत नानक सफल सब किस, प्राभ मिले अत प्यारे। शुभ दिवस आए गए कंठ लाए, प्राभ ऊच अगम अपारे। बिनवंत नानक सफल सब किस, प्राभ मिले अत प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिहागड़ा महला पंजवां, खोजत संत फिरें, प्रभ प्राण आधारे राम। तान तन खीन पया, बिन मिलत प्यारे राम। धन वाहिगुरु साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जी। आवो सजना, हों देखा दर्शन तेरे।

गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवे, हिरदे तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रो हर रंग, जपियो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आंख वखाणी। हार हार नित करें रसना, कहया कछु न जाणी। चेत जिनका हिर लया माया, बोलन पै रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, ए हुआ समाओ। शब्द से ती मन मिलया, सच्चे लाया पाओ। आपे हीरा रतने आपे, जिसनों दे बुझाई। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। शेव शक्ति आपे उपाय, कह करता आपे हुकुम वरताए। हुकम वरताए आप वेखै, गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुकत, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनों आप करे सो होवे, एक सिउ डबलाए। कह नानक आप करता आपे हुकम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार न जाने। तत्तै सार न जाने गुरु बाजों, तत्तै सार न जाने। तिहें गुणे संसार भ्रम सुता, सुतियां रहन विहाने। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनों अंदन हर लिव लागे, जागत रहन विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है, ए वडदाता, जे अगन में आहार पहुंचावे। ओसनों के पो न सके, जिसनों अपने लिव लावे। अपने लिवे आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए। कह नानक वे वडदाता, सो क्यों मनो विसारिए। जैसी अगन उदर में, तैसी बाहर माया। माया अगन सब को जेही, करते खेल रचाया। जा तिस पाण ता जमया, परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तिशना, माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै, मोह उपजै पाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिन्ना लिव लागी, तिन विचे माया पाया। हार आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए, किसे विटों रहे लोक विरलाए।
ऐसा सतगुर जी मिले तिस नो सिर सौंपिए विचों आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हरि आपे मुलक है भगत ना के नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन मन जा रा हर रास मेरी मन मन जा रा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपयो जी हो लाहा खट्यो दिहाड़ी। ए धन तिना मिलया जिन हरे आपे पाणा कहे नानक हर रास मेरी मन हो आवण जा रा। ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै ना पाए। हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। ए हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिस आए। कहे नानक होर अन रस सब विसरे जहां हर वसे मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए सुख दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सपागे अपना पिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभया मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तो जग में आया। जिन हर तेरा अर्थ नरचया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक ए शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवर ना देखो कोई। हार बिन अवर ना देखो कोई नदरी हार निहालिया। एवे संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई। कहे नानक वे नेत्र अंध से सतगुर मिले देव दृष्ट होई। ए श्रवणो मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए। साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुने मन तन हरिया हुआ रसना रस समाने सच लख वडाणी ताकि गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हुवो साचे सुनने नो पठाए।
हार जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पौन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुपत रखाया। गुरुद्वारे लाए पावने एक ना दसवां द्वार दिखाया। तहां नेक रूप नाव नवनिध तिस दायंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। ए साचा सोहिला साचे कर गावो गावो ता सोहिला कर साचे जिथे सदा सच ते आवे। सचो ते आवे जा तुद पावे गुरमुख जना बुझावे। ए सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे। कह नानक सच सोहिला सच्चे कर गावो। ए सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहिला सचे कर गावे। आनंद सुनोवट भागी हो सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जाने। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली साधु एको ओंकार सत गुर प्रसाद। जग दाता सोए भगत विसलते लोए जियो गुर शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो। अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटालिया तोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर पास जियो। सात गुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो अर्जन केरी हर देव नाम निरंजनो। अंत चल दया होए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कहे शाबाश जियो। मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे शाबाश जियो।

तारा मेरे कृपाला। दान दाता राय अपरे अपारा, काट काट अंतर सोहनिया, एक दासी तारी सबल पसारी, जी जंत ले मोहनिया। जिसनो राखे सो सच पाखे, गुर का शब्द बिचारा, कहो नानक जो प्रभु को पाणा, तिस ही को प्रभु प्यारा। माणो प्रभ माणो, मेरे प्रभ का माणो, जानो प्रभ जानो, स्वामी सुगड़ सुजानो। सुगड़ सुजाना साध प्रधाना, अमृत हर का नामा, चाखे खाने सारंग पाने, जिनके पाग मथाना। ते नहीं पाया तिने ते आया, सगल तसे का माणो, कहो नानक तेरे तख्त निवासी, सच तसे दीबाणो। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला, सोहेलड़ा प्रभ सोहेलड़ा, आन हाद तुनिए सोहेलड़ा। आन हद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिस है वधाई, सो प्रभ त्याये सब किश पाइये, मरे न आवै जाय। चू की प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुनिय, कहो नानक कर प्रभ मेरे कै, नित नित मंगल सुनिए, राम कली महला पंजवां।

उरतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख पव खंडनो। जगदीश ईस गोपाल माधु गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैण चितारिये। चरण कमले आधार जन काया सरा राज मिलख भंडार नामे अनंत तरा। नाम नर हर निधान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बिठल सास सास त्यायणा। केल विकहरणा नाम पुना चरणा नाम जमकी त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जानई देख चलत दयाल सुन भगत बखानई। जी जंत सब तुझ ते आवै पुरख पात परमेश्वरा सर्ब जाचक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा। साधु संत सुजान सोए जिसे प्रभ जी माने बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पछाने। मोह निर्गुण या नाथ शरणी आया बाल बाल बाल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुर नाम दिया कुशल थिया सर्ब इच्छा पुनिया जलने बुझाई शांति आई मिले चिरी विश्वनिया। आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया। राम कली महला पंजवा रोण चुनो शब्द अनाहद नित उठ गाइये संतन कै किलबिख सब दुख बिनासन हर नाम जपिये गुरमंतन कै। हर नाम लीजै अमयो पीजै रैन दिन सिया राधिये जोग दाने अनेक करिया लग चरण कमलें साधिये। पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरे बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरे। सुख सागर गोबिंद सिमरन भगत गावें गुण तेरे राम आनंद मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कन्हेरे राम। सुख निधान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभु रखिया। हर चरण लागा परम पागा हर नाम रसना पाखिया। हर एक चितवै प्रभु एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभु करे कृपा पूरा सत गुरु पाया। मेल रहिए प्रभु साथ जना मेल हर कीर्तन सुनिए राम। दयाल प्रभु दा मोदर माधो अंत ना पाइए गुनिए राम। दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारणो मोह शोक विकार बिखड़े जपत नाम उदारणो। सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब ऋण थीमा बिनवंत नानक प्रभु मया की जय नाम तेरा जप जीवा। राख लिए प्रभगत जना अपने चरणी लाए राम आठ पहरे अपना प्रभु सिमरै एको नाम ते आए राम।
ਧਿਆਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਰੇ ਪਵਜਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਲੱਗਾ ਮੀਠਾ ਪਾਣਾ ਸਭੇ ਚ ਪੁੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆ ਮੇਲੇ ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਵਿਸੂਰਿਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੰਤ ਸਲੋਕ ਰਾਣ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ

साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरह। जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूर्ण तिर जा का सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ अर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ संत। सगल इच्छ मेरी पुनिया मिलया निरंजन राय जियो। आनंद पया वड भागियो गृह प्रगटे प्रवे आए जियो। गृह लाल आए प्रभु कमाए ताकि उपमा क्या गणा। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण पना। आपे मिलाए गय कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते समय रहा समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा राण चुंझनड़ा गाओ सखी हर एक त्याओ। सतगुर तुम सेव सखी मन चिंदे अड़ा फल पावो। राम कली महला पंजवा रुती श्लोक एको ओंकार सत गुर प्रसाद। कार बंधन प्रभ पार ब्रह्म बाछो साधा तूर। आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर। किल विख काटन पै हरण सुख सागर हर राय। दीन दयाल दुख भंजन नानक नीत आए संत। जस गावो वट पागी हो कर कृपा भगवंत जियो। रुती मां मूर्त कड़ी गुण चरित शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन ते जन जिन्नी एक मन त्याया। सफल जन्म पया तनका जिन्नी सो प्रपाया। पुन दानना तुल क्रिया हर सर पापा हंत जियो। बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रा हंत जियो। श्लोक उदम अगाम अगोचर चरण कमल नमस्कार। कथने साध दुभावसी नानक नाम आधार। संत शरण साजन परो स्वामी सिमरे आनंद।

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप,

0: न कोई। तर तराजू तोलिए निवे सुगुरा होए, अपराधी दुणा नवे जो हंता मिर गाए। शीश नवे क्या थिया जारे देख सुते जाए महला पहला।
1: हड़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूस बगल सुमादंग, मुख झूठ विभूखण सारंग, त्रैपाल तिहाल विचारंग, गल

कोई ना पिटो जाए सुचे हो कह जे व्या लगा पण छलोक को हते जाए सुटिया किसे लगा दो आन देवता पाणी देवता बैसंतर देवता लोन।

खोजत संत फिरें, प्रभ प्राण अधारे राम। तान तन खीन पया, बिन मिलत प्यारे राम। खोजत संत फिरें, प्रभ प्राण अधारे राम। तान तान खीन पया, बिन मिलत प्यारे राम। प्रभ मिलो प्यारे मया तारे, कर दया लाड़ लाए लीजिए। दे

तपत ना कतै बुझै, बिन स्वामी शरण राम। प्रभ शरण तेरे काट बेरे, संसार सागर तारी है।

हार बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरणा, अमै सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संता संग मिले जाप पूरन कामा राम, सब काम पूरन दुख बिदीरन, हार निमख मनह ना बिसरै, आनंद आन दिन सदा साचा, सर्ब गुण जगदीश रै, अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको तमा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा, कई कोटिक जग फला, सुन गावन हारे राम, हार हार नाम जपत,

सो हंत पराणी ताकी महिमा केत गना हार बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन साधु मना शुभ दिवस आए गय कंठ लाए प्रभ ऊच अगम अपारे बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे शुभ दिवस आए गय कंठ ला।

मैं तो दिया गैर दास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बिनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई,

कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी।

अनेक विधि समझावू हमें अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें अपन बिरद रखावू तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। वाहिगुरु जी, अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई, अब मोको भये राजा राम सहाई।

रहाऊ। साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छडाई। अमृत नाम जपूं रस रसना, अमोल दास कर लीनू अपना।

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जात बेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिले आ मेरे भाई, जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज।

हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तह जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया में फद रहो बिसरो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया कह अंद। कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम बंद। सुख में बहु संगी पै दुख में

जन्म जन्म परमत फिरयो, मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर पज मन निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो

मिटाए, दर्श तुहारो हो मुदामणी। महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो।

सात गुर प्रसाद राग माला राग सम रंग संग लापे आठो नंदन प्रथम रा पैरो वै कर ही पंज राग नि संग उचाराई प्रथम भैर भी बिलावली ही पुनिया की गा वह बंगली पुन सले के पे बार ही है पैरों की पांचो नारी पंज मरद सा सना वह बंगाल मद माधव गा वह ललत बिलावल गा वही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव कह गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौश कला पै संग रागनी पांचों था पै गौंड करी और देव गंधारी गंधारी स्योती उचारी त्रासरी है पांचों गाई मारा कौ साक संग लाई मारो मतंग मैं वारा पर बचन कौश के अभारा खौ खड़िया भौर नद गाये अष्ट माल कौश संग लाए बुनायो हिंडोल पंज नार संग सोत उठे तान कलोयल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर साई सर श्री लय पार जा संग लाई पंचों आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रम बे मंगल सहाय सरसबान आए बनोदा गावे सस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कह सवारी पुनाई दीपक की बारी काशेली पटमंजरी टोडी कई अलाप का मोदी ओ गुजरी संग दीपक थाप कलंका कुंतले ओ रामा कमल को चंपक नामा गौरा ओ कमला कले अन्ना अष्ट पुत्र दीपक जाना सब मिल सिरा वह गावे पांचों संग बरंगण लावे बैरारी गरनाटी तरी गवरी गावे आसा वरी ते पासे सिंधवी अलापी श्री राग सिंह पांचों धापी सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग कह गौंड कौंब अमीर कष्ट मेरा वै गावे पांचों संग बरंगण लावे सोट गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुनी उच्चे सुसो पुन गिनी मेघ राग सिंह पांचों चीनी बैरा दर गई दर कह दारा जबली तनड़े ओ जल तारा पुन गावे शंकर ओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खस राग उन गाए संग